Dog eats him sweet. So, are you tiger or? Please, Guruji, don't go so far. The tiger eats only the meat. But you are eating everything. You are not a tiger. Anyhow, every creatures have their principles, they do. But humans are, unfortunately, eating and behaving in such a way which is not given to by God. Achar, vichar, ahar and vihar, these principles is for the humans. And the rishis, great saints, rishis, they gave certain rules, regulations, principles that what humans should do. And they occupied these humans that they don't do stupid things. And so there are many days you should fasting. On that day you should not cut a tree. On that day you should not eat this. That day you should eat only milk, drink, etc., etc. So that humans' brain is occupied with the good qualities, with the good things. Therefore, it is said that God has given to this soul, jivatma, to the humans. But only when this jivatma enters into the human body, it means not that can be the holy already. That we don't know what you are thinking, what I am thinking. But in this hall where we are sitting, there are two who knows everything. आप इस कमरे में हॉल में बैठे आश्रम में तो आपको पता है आपको पता होना चाहिए कि इस हॉल के अंदर में दो ऐसे हैं जो कि आपके मन की बात आपके विचार आपके फीलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो दोनों ही जानते हैं आप नहीं छुपा सकते हो एक तो है भगवान भगवान सब कुछ जानते हैं कि नहीं जानते आप झूठ बोलोगे आप ये करोगे आप तो भगवान जानता है भगवान देखता है एक महात्मा आए और उनके पास दो भक्त आए दो डिसाइपल्स They want to become the disciple of the Maharaj. Ke Guruji, hame mantra dijiye, hame aashirvaad dijiye, mere ko shishya banaiye. To Guruji ne kaha, theek hai, pariksha. Ke haan, kahiye Gurudev, kya pariksha? Ke dono ek ek kabutar pakad ke leke aa jao. Gaye, dono ek kabutar pakad ke leke aa gaye. To Guruji ne kaha, कि आप दोनों जाओ चक्कू लेकर के और कबूतर को मार के आ जाओ लेकिन उस जगह जाकर के मारना कि कोई उसको देखे नहीं एक गया बाथरूम में जाके उसकी गर्दन काट के आ गया ले गुरु जी कि किसी ने देखा कि नहीं किसी ने नहीं देखा दूसरे को कहा ले भाई तुम भी तरह जा वो गया बाथरूम में गया वापस आया कि गुरुजी आपने कहा कि कोई नहीं देखे वहां लेकिन मैं तो देख रहा हूं तो तेरे आंख पट्टी बांध ले जा पट्टी बांध के गया वापस फिर आ गए वापस कि गुरुजी आपने कहा कोई नहीं देखता है
मेरे तो आके पट्टी बांध दी, लेकिन कबूतर तो देख रहा है कि मैं उसको मार रहा हूं, कि उसकी भी पट्टी बांध दे। गए वापस।

श्री श्री देव पुरुषा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी सिद्ध पीठ की सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वधिसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरुतम नमाम्यम ओम शांति शांति शांति।

वृत्ति अचल सदाई स्थिर रहे मेहरू जैसा. देयर वृत्ति इज सदा अटल. देयर वृत्ति इज डजंट चेंज. सदा अटल अनमूवेबल अचल स्थिर है मेहरू जैसा. एंड हाउ दे आर अनमूवेबल. दे डोंट मूव देयर थॉट्स. दे डोंट मूव देयर फीलिंग्स. दे डोंट बिकॉज एवरीथिंग इज इनपरफेक्ट. सो दे आर अनमूवेबल लाइक वास व्हाट मेहरू जैसा. मेहरू मीन्स माउंटेन. कैन यू मूव द माउंटेन? नो. बट वेन देयर इज सम टू स्ट्रांग हीट अर्थक्वेक देन दैट एंगर दैट कैन इवन मूव द माउंटेन. But that it doesn't come. Before it comes, it goes somewhere else. Andar bahir hai tyag, tyagi puran, gain dasa paisa, dhara paisa. अंदर बाहर त्यागी ऐसा पूरन. ही इज डिटेस्ट आउटसाइड एंड इनसाइड. भाव भंजन भगवान सदा ही. गैर दारा पैसा. ही इज नॉट रनिंग बिहाइंड द माया द प्रॉपर्टी और वट एवर अवर बर्डली थिंग्स. भव भंजन भगवान सदा ही. भव भंजन ही हैव नो फियर. इज वन लाइक स्काई. भंजन ऑल द टाइम्स. भजन भजन भगवान सदा ही. ही इज दैट इज अ गॉड फॉर एवर. ताके कर्म कटे कर्म कलेशा. कटे मीन्स कट. ही कट्स द ऑल कर्म एंड कलेशा. कर्म मीन्स अवर कर्माज एंड कलेशा मीन्स अवर फाइटिंग्स. ऑल ही विल गिव अस द रिजल्ट एंड वी विल बी इन द पीस. हंस उबारण जग में आया शुभ अवतार धरेशा. टू लिबरेट द स्वान मीन्स दिस आत्मा भक्तास. यू आर ऑल स्वान. पीसफुली बैठे हो. वेरी नाइस पीसफुल यू आर सिटिंग लाइक ए वेरी पीसफुल स्वान यू नो. मी टू. एंड महाप्रभु जी विल डेफिनेटली लिबरेट. हंस उबारण जग में आया. ही केम इन दिस वर्ल्ड टू लिबरेट ऑल दिस स्वान्स दिस भक्तास प्यार भक्तास. भगवान कृष्ण सेड टाइम टू टाइम आई इनकार्नेट विथ माई योग माया एंड आई सेव लिबरेट माई भक्तास एंड किल द राक्षसास द नेगेटिव एनर्जी. So Asuri Shakti and Devik Shakti. And that's why all avataras in their hand, good things and weapon though, both. I remember many times Guruji said, in my hand, in one hand I have ladu, big ladu. In other hand I have stick. What do you want? I said, ladu, then sit down and learn. That's it. Yes? Don't do stupid things? Yes? So, Hans Ubaran Jagme Aya Shubh Avatar Dharita. And therefore, his incarnation.

सतगुरु ऐसा राम ऐसा गुरु ऐसा राम ऐसा दीप नारायण भगवान की देवेश्वर महादेव अलकपुरी जी महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म ओम शांति शांति।

ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यदायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।

हथेलियों को अच्छे से मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरुजी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुदेव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको, ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव मारदानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की,

0: तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है। मतलब वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा ना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य श्रीधनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो वो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my
2: people.
1: Okay.
2: In America.
1: Okay.
2: To Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and?
2: Daily Life Foundation, Austria or India.
1: Okay.
2: India. Yoga and Daily Life
1: Yoga
2: Foundation.
1: In?
2: Yoga in Daily Life.
1: Yoga in Daily Life.
2: Foundation.
1: In Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji. DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announced that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Ke dollar?
1: The best thing.
2: Among us, there is sitting one Brahmarishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So Brahmarishi ji, aaiye aap, and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Mr. Lalji, Brahmarishi, P. Thawla, Nagor.
1: Nagor. Daya dharma ka mool hai, paap mool abhiman. Tulsi daya na chhodiye jab tak ghat mein praan. Sabhi sajjano, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताई है वो मानव तन है क्या। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बने क्या, और वो भी भारत खंड के अंदर बने क्या। 84 लाख जोन में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जून है। 4 लाख मान का जून के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंह पूछ के, जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर क्या, जहां दया है। कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है ये जीव आता ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है, और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि मैं महाराज श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

बात अरे आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है हम यहां बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। क्या

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पसंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी

0: come a little back. Thought of. मेरे पप्पी से आओ या मेरे पास में, अब दोनों एक साथ साथ रहो बेटा। हमारे मास्क निकाल दो। साइड करो स्लो। थैंक यू।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय।
0: थोड़ा दूर है।
2: हिंदुगम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय।
1: श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
2: Without Guru, we cannot know Brahma, Vishnu, Mahesh. Actually, Guru is not only Brahma, Vishnu, Mahesh. Guru is also Par Brahma Parameshwar. Om Guru.

0: पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परिवचकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय।

दीप ज्योति पर ब्रह्म दीपम सर्वे मोहनम दीपनम सजते सर्वम संध्या दीपम सर्व सत्यम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम्।

0: सतगुरु स्वामी माधवानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सब ऋषि मुनि महात्माओं की, मात पिता गुरुदेव की।
1: हरिओम।

0: जब लक घट में प्राण। दया, दया मीन्स मर्सी, कॉम्पैशन, लव। दया धर्म का मूल है। धर्म मीन्स राइटनेस, अचीवमेंट, प्रिंसिपल। अहिंसा परमो धर्मा, द हाइएस्ट प्रिंसिपल इज ए नॉन वायलेंस, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशियल, पॉलिटिकली, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। इफ यू टॉक बैड अबाउट समवन और दैट, दिस विल कम बैक टू यू। सो यू शुड बी लाइक ए लाइट, व्हेन यू टर्न ऑन द लाइट, डार्कनेस इज गॉन। देयरफॉर लॉर्ड लेट मी बी लाइट इन डार्कनेस, सो दैट आई वेर एवर कम आई मे इन लाइट द हार्ट्स ऑफ अदर्स। धर्म, विदाउट धर्म दिस फ्लावर्स विल नॉट ग्रो, विदाउट दैट धर्म द फ्रूट्स विल नॉट कम। दैट कॉल्ड सनातन धर्म, द यूनिवर्सल प्रिंसिपल। एंड हाउ टू अचीव दैट, अंडरस्टैंड दैट, इज कॉल्ड दया। उस फॉर द दया वी हैव टू फॉलो दैट धर्म, मर्सी। विच धर्म डिड दैट मदर्स फॉलो? दो दे वर सफरिंग बट दे डिडंट गिव अप देयर मर्सी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। एंड द रूट्स ऑफ द सिंस इज ईगो। आई विल डू, आई विल डू, दे विल सी, इट विल सी, आई। दैट इज द पार्ट ऑफ द इग्नोरेंस एंड सफरिंग। ग्रेट स्वामी शिवानंद जी सेड इन हिज वन ऑफ द नाइस पोएम, विद इन यू इज द मर्सी ब्लिस ऑफ द ओशन, एंड विद इन यू इज द फाउंटेन ऑफ द जॉय। किल दिस लिटल आई एंड लीड डिवाइन लाइफ। सो आई इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। And when the ego is, we cannot surrender, we cannot be humble, and we think we are the humans, we can do everything. Yes, you can do everything, but you have to then suffer everything. It will multiply like a snowball. You know what I mean, snowball? Do you ever hear snow?
1: Yes.
0: Oh, very good. So when you make a snowball and let it roll from the hill down, it gets more and more snow catches and becomes small ball, becomes big one. That's what we call snowball. So every action will have a reaction, and every reaction will have action. Doesn't matter you believe

0: प्रभु प्रार्थना और प्रभु का स्मरण और गुरुदेव की कृपा लास्ट में कहा है गुरु कृपा ही केवलम तो शिष्य के परम मंगलम। जिसके ऊपर केवल गुरुदेव की कृपा होती है तो शिष्य के लोक परलोक में परम आनंद और मंगल हो जाता है। इसीलिए सतत गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। ये भजन गाते हो ये वेदों का सार है, ये तुम्हारे हृदय में वेद का सार यानी ज्ञान प्रकट होता है। साक्षात परमात्मा महाप्रभु जी के मुखारविंद से जो वचन निकले हैं वो वेदों से भी अधिक है। वो हो सागर से सहज तार लेते हैं।
1: The following day, there was the festival of the Dawn of Consciousness, the Light of Consciousness Festival. The day of Guru Purnima has dawned. Guru Purnima is the day of Gurudev's glory and the ancient verses of Guru Gita that are his hymn. All those who seek knowledge need a teacher, and one who seeks spiritual enlightenment finds a guru, a master, one who knows Atma and Paramatma, soul and God. India has kept the spiritual knowledge alive and attainable to all through direct interaction between guru and his disciple. This relationship always assumes the full commitment of the master and the surrender of a disciple.

0: So in our scriptures, in our teachings, in our way of life, there cannot be any other great person than Guru in the world for the disciple and for the all the followers of the yogic way of life.
1: Tamso ma jyotir gamaya. Lead us from the darkness to the light. The first, very first day when the first resonance was awoken in the endless universal consciousness, where the consciousness was dormanted, the first was that resonance, the sound, that was the Om. And through that sound, the second element, the second tattva, beside the akasha, the fire element was created. And that first very moment is that is was the beginning of the Guru Purnima.
2: गुरु का मतलब है गुमन अंधकार रूमन है प्रकाश अंधकार मेट के अपनी भूल है अज्ञान है वही अंधकार है उसको मेट के प्रकाश देने वाले सत्य ज्ञान देने वाले अज्ञान को हटाने वाले वही सतगुरु होते हैं गुरुदेव को पहचानने वाले बहुत थोड़े भक्त होते हैं गुरुदेव को पहचाने वो स्वयं गुरु रूप परमात्मा रूप हो जाते हैं और गुरुदेव की कृपा होती है आत्मा का ज्ञान हो जाता है लोक परलोक का ज्ञान हो जाता है स्वयं भगवान ने मानव को पवित्र होने के लिए मानव को सुखी होने के लिए ये गुरु पूनम का पर्व बनाया है
3: Everybody wants to personally approach Holy Guruji and Swamiji, to see him and to be seen, to touch him and to be touched. This is a privilege of Guru Bhakta. Bhajans, the spiritual songs and odes to gurus, are sung all night on this night of an unforgettable full moon.

श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री देव पुरुषम महादेव की जय। धर्म सम्राट स्वामी मदवनंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। महामंडलेश्वर जी स्वामी अवतारपुरी जी महाराज की जय। अलकपुरी

श्री दीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुरी जी गुरुदेव की जय। आज के नंद की जय। सब संत।

0: रतन धारण कीजे, आज के आनंद कीजे।
1: जय। दीपताई भगवान की जय। श्री श्री विश्वगुरुदास पार परम स्वामी अशुंज गुरुदेव।

की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव।

जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। Anybody wants to sing?

से आग पूरी समारी की जय। देवेश्वर महादेव की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। हिरण्यकश्यप श्री स्वामी माता कृष्ण भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडल स्वामी महेश्वर जी गुरुदेव की जय।

ओम बोले सिद्धिप नारायण भगवान की जय। विश्वगुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय
0: श्री देवेश्वर महादेव
1: की जय
0: श्री अलक पुरुष महादेव
1: की जय
0: श्री स्वामी माधवानंद होली गुरु जी की जय
1: विश्व
0: गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।